शब्द ज्ञान की सहायता से विकास के शिखर पर तो पहुंचा जा सकता है, लेकिन परम लक्ष्य परमानंद को तो ब्रह्म ज्ञान द्वारा ही पाया जा सकता है।

0: बढ़ाएं अपना बिजनेस, एडवरटाइज करें FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता पर और पाएं एनिवर्सरी डिस्काउंट। देर ना करें और अभी फोन करें 7056413010 पर।
1: हम हैं अम्बाला कैंट स्थित सामुदायिक रेडियो FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता। हम सफर जिंदगी का अम्बाला।

करें अपने दिन की शुरुआत रेडियो विविधता के गीतों के साथ। 90.0 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो विविधता, अंबाला का अपना रेडियो।

ये अंबाला कैंट का सामुदायिक रेडियो FM 90.0 मेगाहर्ट्ज रेडियो विस्तार है। हम सफर जिंदगी का अंबाला का अपना रेडियो।

आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz पर रेडियो विदस्ता, अंबाला का अपना रेडियो। सुनते रहिए अपने पसंदीदा गीत।

ये अंबाला कैंट का सामुदायिक रेडियो FM 90.0 मेगाहर्ट्ज रेडियो विस्तार है। हम सफर जिंदगी का अंबाला का अपना रेडियो।

रेडियो विदस्ता 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर, घर घर की आवाज, रेडियो विदस्ता। हम सफर जिंदगी का

0: बढ़ाए अपना बिजनेस, एडवरटाइज करें FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता पर और पाएं एनिवर्सरी डिस्काउंट। देर ना करें और अभी फोन करें 7056413010 पर।
1: हम हैं अम्बाला कैंट स्थित सामुदायिक रेडियो FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता। हम सफर जिंदगी का अम्बाला का अपना रेडियो।
2: पेशा कार्यक्रम सरगम एपिसोड 2 प्रस्तुत करेंगे आरजे किरणी।
3: फिल्मी गीतों पर आधारित पेश है प्रोग्राम सरगम। इस कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपकी रेडियो दोस्त किरणी। लीजिए प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं आपकी कसम फिल्म के गीत के साथ, जिसे लिखा है आनंद बख्शी ने, संगीत आरडी बर्मन का है और आवाज दी है लता मंगेशकर और किशोर कुमार ने।

लीजिए अब सुनिए मन की आंखें फिल्म का गीत लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी के स्वर में। गीत लिखा है साहिर लुधियानवी ने और संगीत से सजाया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

कार्यक्रम का अगला गीत है शैलेंद्र सिंह और लता मंगेशकर की आवाज में फिल्म चलते चलते से। गीत के बोल लिखे हैं अमित खन्ना ने और संगीत दिया है बप्पी लहरी ने।

अब आपको सुनाते हैं मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर की आवाज में गाना, जो वापस फिल्म का है। संगीत दिया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने और बोल लिखे हैं मजरूं सुल्तानपुरी ने।

सभी श्रोताओं के लिए पेश है फिल्म शर्मिली का गाना, जिसे लिखा है नीरज ने, संगीत दिया है SD बर्मन ने और स्वर दी है किशोर कुमार और लता मंगेशकर ने।

0: ए यहाँ हमें जमाना देखे
1: तो
0: आओ चलो कहीं छुप जाए।
1: अच्छा।

इस कार्यक्रम का अगला गीत है सुमन कल्याणपुर और मोहम्मद रफी की आवाज में, जिसे लिखा है हसरत जयपुरी ने, संगीत दिया है शंकर जयकिशन ने और फिल्म का नाम है अप्रैल फूल।

प्रोग्राम की अगली पेशकश है साहिर लुधियानवी के लिखे हुए गीत की, जो फिल्म त्रिशूल का है, जिसे गाया है लता मंगेशकर और किशोर कुमार ने और संगीत दिया है खयाम ने।

0: ओ कभी कसने न तोड़े उसे जीते जी न छोड़े जो यार अपना जो।
1: अब पेश है फिल्म ताजमहल का गाना जिसे गाया है लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी ने और जिसे लिखा है साहिर लुधियानवी ने और संगीत रोशन का है।

इस कार्यक्रम की आखिरी पेशकश है हरे रामा हरे कृष्णा फिल्म का गीत। संगीतकार आरडी बर्मन, बोल लिखे हैं आनंद बख्शी, आवाजें हैं किशोर कुमार और लता मंगेशकर की।

0: आपको हमारे प्रोग्राम कैसे लगते हैं उसका फीडबैक हमें जरूर रेडियो विदस्ता के इस नंबर पर दीजिए। नंबर है 7056413010। सरगम कार्यक्रम का समय अब समाप्त होता है, दीजिए इजाजत, नमस्कार।
1: आप सुन रहे थे हमारा कार्यक्रम सरगम एपिसोड 2, प्रस्तुत किया आरजे किरणी ने, रिकॉर्डिंग व एडिटिंग दीपक कश्यप, निर्देशन भरत सोपोरी। ये थी FM 90.0 MHz रेडियो विदस्ता की पेशकश।

0: बढ़ाएं अपना बिजनेस, एडवरटाइज करें FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता पर और पाएं एनिवर्सरी डिस्काउंट। देर ना करें और अभी फोन करें 7056413010 पर।
1: हम हैं अम्बाला कैंट स्थित सामुदायिक रेडियो FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता। हम सफर जिंदगी का

मेरी नमस्कार, मैं आपकी रेडियो सखी नेहा धाकड़ लेकर आई हूँ आज आपके लिए एक नई कहानी जो हमें सिखलाती है कि हम सभी अपनी क्षमता के अनुसार सोचते हैं, लेकिन भगवान हमें अपने हिसाब से सब कुछ दे देते हैं। हम छोटा मांगते हैं और कई बार भगवान हमें उनके देने की क्षमता के आधार पर कुछ अच्छा और कुछ बड़ा दे देते हैं। तो ऐसी ही कहानी है एक राजा की जो अपनी प्रजा का बहुत ख्याल रखता था। वह अपनी प्रजा के बीच जाता था और उनकी समस्याओं को सुनता था। वह कोशिश करता था कि वह उनकी समस्याओं को दूर कर सके। उसकी कर्तव्य निष्ठा के चर्चे दूर दूर तक फैले हुए थे। तो एक बार राजा अपने राज्य में भ्रमण करने के लिए निकले हुए थे, तो रास्ते में चलते चलते उनके शाही कुर्ते का एक बटन टूट जाता है। जब राजा ने बटन को देखा तो उन्होंने तुरंत मंत्री को बुलाया और आदेश दिया कि वो गांव से एक अच्छे दर्जी को बुला कर लाएं जो उनके शाही कुर्ते का बटन लगा सके। ये सुनकर मंत्री ने गांव में दर्जी की खोज शुरू कर दी और संयोग से उन्हें एक दर्जी भी मिल जाता है। गांव में दर्जी की एक छोटी सी दुकान थी। उस दर्जी को जल्दी ही राजा के पास लाया गया और दर्जी को कहा गया कि उन्हें राजा के शाही कुर्ते को बटन लगाना है। तो वो दर्जी महल में पहुंच जाता है। महल में पहुंचने के बाद उस दर्जी से राजा ने कहा कि क्या वो उसके कुर्ते के बटन को लगा सकते हैं। दर्जी ने कहा, यह तो बहुत आसान काम है। दर्जी ने अपने थैले से धागा निकाला और कुर्ते का बटन लगा दिया। राजा बेहद खुश हुए और उससे पूछा कि वो उन्हें कितने पैसे दे। इस पर दर्जी ने कहा, इतने से काम के लिए वो पैसे नहीं ले सकता। ये तो बहुत छोटा सा काम है राजा जी, इसके लिए मैं कोई रकम आपसे वसूल नहीं कर सकता। इस पर राजा ने कहा कि वो इसकी कीमत जरूर देंगे। दर्जी ने सोचा कि उसने तो बस धागा ही लगाया है, तो उसके 2 रुपए मांग लेता हूँ। फिर दर्जी ने सोचा कि कहीं राजा यह ना सोच ले कि इतने से काम के 2 रुपए तो गांव वालों से कितना पैसा लेता होगा। यह सब सोच समझकर दर्जी ने कहा कि वो अपनी इच्छा से जो भी देंगे मुझे वो मंजूर है। राजा ने अपनी हैसियत के मुताबिक उसे 2 गांव देने का फैसला किया। राजा ने सोचा कि कहीं समाज में उसका रुतबा छोटा ना हो जाए, इसलिए अपनी इज्जत को और बढ़ाने के लिए उसने आदेश दिया कि दर्जी को 2 गांव दिए जाएं। दर्जी ने सोचा कि कहां तो वो 2 रुपए मांग रहा था और कहां वो 2 गांव का मालिक बन गया। तो इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हम सभी अपनी क्षमता के अनुसार सोचते हैं, लेकिन भगवान हमें अपने हिसाब से सब कुछ देते हैं। हम छोटा सा मांगते हैं और कई बार भगवान हमें उनके देने की क्षमता के आधार पर कुछ अच्छा और बड़ा दे देते हैं। इसलिए गीता में श्री कृष्ण जी ने भी कहा है कि कर्म करो, फल की इच्छा मत करो, और यही इस कहानी का सार भी है। तो ये थी हमारी आज की कहानी। अगर आपके पास भी कोई स्वयं रचित कहानी है तो आप हमें भेज सकते हैं। अगर हमें वो कहानी अच्छी लगी तो हम उसे अपनी आवाज देकर श्रोताओं तक जरूर पहुंचाएंगे। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 7056413010, 7056413010। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। सुनते रहो FM 90.0 MHz पर रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।

तुम सुन रहे हैं 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो वितस्ता, अंबाले का अपना रेडियो। सुनते रहो अपने पसंद के गाने।

ये अंबाला कैंट का सामुदायिक रेडियो FM 90.0 मेगाहर्ट्ज रेडियो विस्तार है। हम सफर जिंदगी का अंबाला का अपना रेडियो।

ये अंबाला कैंट का सामुदायिक रेडियो FM 90.0 मेगाहर्ट्ज रेडियो विदस्ता है। हम सफर जिंदगी का अंबाला का अपना रेडियो।

0: बढ़ाएं अपना बिजनेस, एडवरटाइज करें FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता पर और पाएं एनिवर्सरी डिस्काउंट। देर ना करें और अभी फोन करें 7056413010 पर।
1: हम हैं अंबाला कैंट स्थित सामुदायिक रेडियो FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता। हम सफर जिंदगी का अंबाला का अपना रेडियो।
2: कैच द रेन, बारिश के पानी की एक एक बूंद को हमें बचाना है, तो मेरा खास आग्रह है वर्षा का बूंद बूंद पानी हम मिलकर के बचाएं।
3: जल है तो हम है, आइए घरों ऑफिसों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग तकनीक अपनाएं, रिचार्ज पिट और शाफ्ट बनवाएं, अनुपयोगी बोरवेलों को ठीक करें, जलाशयों से गाद निकालें, अधिक से अधिक पेड़ लगाएं। इस बारिश आइए जुड़े कैच द रेन अभियान से।
4: आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz पर रेडियो वितस्ता, अंबाला का अपना रेडियो। सुनते रहिए अपने पसंदीदा गीत।

0: FM 90.0 MHz पर आप सुन रहे हैं रेडियो दस्ता हम सफर जिंदगी का, और मैं हूं आपका अपना रेडियो हम सफर नरेश शर्मा। हर बार गुदगुदाता हूं, हंसाता हूं, रुलाता हूं अपनी बातों से, अपनी कहानियों से। आज कुछ ऐसी बात कहने आया हूं जिसको आप सुनेंगे तो शायद अफसोस करेंगे कि हमने इसको रिकॉर्ड क्यों नहीं कर लिया। आप इसको अपने पास किसी भी तरह से रिकॉर्ड कर लीजिए, क्योंकि ये बहुत काम आने वाली चीज है। मैं आपको भक्ति के दोहे बता रहा हूँ और उन दोहों में स्वास्थ्य के राज छुपे हुए हैं। तो आप सिर्फ सुनिए और इस बार समझिए, अगली बार उसको स्टोर कीजिए। तो दोहों के बीच में कहा यह गया है कि पानी में गुड़ डालिए बीत जाए जब रात, पानी में गुड़ डालिए बीत जाए जब रात, सुबह छान कर पीजिए अच्छे हों हालात। ऊर्जा मिलती है बहुत, पिए गुनगुना नीर, कबज खत्म हो पेट की, मिट जाए हर पीर। प्रातःकाल पानी पिए घूट घूट कर आप, बस दो तीन गिलास है और औषधि का बाप। ठंडा पानी पियो मत, करता क्रूर प्रहार, करे हाजमे का सदा ये तो बंटा थार। भोजन करें धरती पर अल्थी पल्थी मार, चबा चबा कर खाइए वैद न झांके द्वार। प्रातःकाल फल रस लो, दोपहर लस्सी छांस, सदा रात में दूध पी सभी रोग का नाश। एल्युमिनियम के पात्र का करता जो उपयोग, आमंत्रित करता वो सदा 48 रोग। फल मीठा खाए के तुरंत न पीजे नीर, फल मीठा खाए के तुरंत न पीजे नीर, ये सब छोटी आंत में बनते विषधर तीर। चोकर खाने से सदा बढ़ती तन की शक्ति, गेहूं मोटा पीसिए दिल में बढ़े व्यक्ति। आप सोचते होंगे ना कि बीच में रुका क्यों, बताता हूँ आपको। मैं भी मोटा नहीं खा पाया, कहने के टाइम फिर याद आया कि हाँ मुझे घर पर जाकर बताना है कि जो गेहूं है वो मोटा पिसवाना है, कहीं ऐसा ना हो कि मैं सिर्फ लोगों को बताते रह जाऊं और मेरे अपने दिल में विरक्ति हो जाए। तो चाहिए अगले दोहे के ऊपर आते हैं कि रोज मुलठी चूसिए कफ बाहर आ जाए। क्या कहा, रोज, एक दिन की बात नहीं है, रोज मुलठी चूसिए कफ बाहर आ जाए, बने सुरीला कंठ भी सबको लगत सुहाए। भोजन करके खाइए सौंफ गुड़ अजवाइन, पत्थर भी बच जाएगा जाने सकल जहां। प्रातः दोपहर लीजिए जब नियमित आहार, 30 मिनट की नींद ले रोग न आवे द्वार। भोजन करके रात में घूमे कदम हजार, डॉक्टर ओझा वैद का लुट जाए व्यापार। घूंट घूंट पानी पियो रह तनाव से दूर, एसिडिटी और मोटापा होवे चकनाचूर। अर्थराइटिस या हर्निया अपेंडिक्स का त्रासा, पानी पीजे बैठकर कभी न आवे पासा। रक्तचाप बढ़ने लगे, रक्तचाप बढ़ने लगे तब मत सोचो भाप, सौगंध राम की खाए के तुरंत छोड़ दो चाय। हैं तो दोस्तों बहुत कुछ जो मैं आपको सुनाता रहूं और आप सुनते रहें, लेकिन बात तो तब है ना कि हम अमल कितनों पर करते हैं। इसलिए आज इतने ही दोहे, जब आप बताएंगे ना कि आपको इनसे कुछ लाभ हुआ और सुनना चाहेंगे, फिर मैं आपके लिए और भी दोहे तैयार करूंगा और आपको उन दोहों से भी मुखातिब करूंगा। फिलहाल अपने इस रेडियो दोस्त को इजाजत दीजिए, अगली बार तक के लिए एक और नई रचना लेकर आपके बीच में हाजिर होता हूं। तब तक के लिए सुनते रहिए हमारे रेडियो विदस्ता को, और आपका जो भी प्रतिक्रिया है वो प्रतिक्रिया हमारे को हमारे दूरभाष नंबर 7056413010 पर सूचित करना मत भूलिए, और साथ ही हमें बताइए आपकी पसंद क्या है, आप हमसे क्या सुनना चाहते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।
1: जब देखो पढ़ाई पढ़ाई, थोड़े घर के काम में हाथ बटाना भी सीख ले, के करेगी इतना पढ़ के।
2: ITI में दाखिला लूंगी और फिर एक अच्छी नौकरी करके अपने परिवार के सारे सपने पूरे करूंगी।
1: इतना आसान हो गया के?
2: माँ, लगता है आपको पता नहीं कि महरी हरियाणा की ITI में दाखिले शुरू हो गए हैं, जहाँ पे 8वीं, 10वीं और 12वीं पास युवा राज्य की 197 सरकारी और 180 प्राइवेट ITI के 1 और 2 साल के कोर्सों में एडमिशन ले सकते हैं। इन ITIs में 93 ट्रेड्स में 80,000 से ज्यादा सीटें हैं।
1: अधिक जानकारी हेतु www.itiharyana.gov.in पर लॉगिन करें अथवा निकटतम ITI में संपर्क करें।
3: तोछु बोजन FM 90.0 रेडियो विदस्ता, हम सफर जिंदगी हुन। بوزان روزیو پنن پسندید بغت.

0: कैच द रेन, बारिश के पानी की एक एक बूंद को हमें बचाना है। तो मेरा खास आग्रह है, वर्षा का बूंद बूंद पानी हम मिलकर के बचाएं।
1: जल है तो हम है, आइए घरों ऑफिसों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग तकनीक अपनाएं। रिचार्ज पिट और शाफ्ट बनवाएं, अनुपयोगी बोरवेलों को ठीक करें, जलाशयों से गाद निकालें, अधिक से अधिक पेड़ लगाएं। इस बारिश आइए जुड़े कैच द रेन अभियान से।

वास्तव में जीवन चलना है, ढलना है, जलना है, रूहों का सफर है, इनके साथ जन्म जन्म के रिश्ते बंधे हैं। कोई चला गया तो कोई जाने की तैयारी में है। समा है 100 बरस का, पर पल भर की खबर नहीं।

क्यों तुम याद आते हो अक्सर इस खामोशी में। जमाने बीत गए, बदलते रहे मौसम, चांदनी रातों में चिनारों की ठंडी छांव तले आंखों में बसते हैं ख्वाब, और कभी इन ख्वाबों की ताबीर हुआ करते थे आप, पर बिछड़ते इन मौसमों के संग ख्वाब भी टूट गए और बिखर गई चांदनी।

पंछियों की टोलियां रवा हैं अपने सफर पे, और दूरानी सफर अपनी परवाज लिए आकाश की बुलंदियों को छूना ही ये अपना लक्ष्य मानते हैं। इनके लिए सरहदें कोई मायने नहीं रखते हैं, इनको बस उड़ने से मतलब है। बादलों में गुम हो जाना शायद इनका मकसद रहता है। फिर धीरे धीरे ये अपना सफर तय कर लौट आते ही जमीन पर इन पीले फूलों के खेतों में शबनमी बूंदों से नहा लेते हैं।

तुझे जाना है फलक पर अब, पर मिलोगी शायद तुम वहां, धड़कने ही उदास तुम्हारे बगैर। धड़कने ही उदास तुम्हारे बगैर और चाहते ही बेअसर। अब यहां प्यार चुभता है क्योंकि फासले ही दरमिया, तभी मोहब्बत बेमाने है। सुरीली यादें ही जावेदा जो बह जाती हैं अक्सर मेरे साथ।

चांदनी रातों के बाद एक ऐसी ही सुबह का इंतजार रहता है जो मेरे लिए गुलाबी सुबह बन जाए। आओ, आओ तुम्हें इन बर्फीली हवाओं का एहसास कराएं। चल मेरे साथ कोहसारों के उस पार जहां पल भर के लिए अब मर जाएं।

दोस्त, आपको आज का हमारा ये कार्यक्रम कैसा लगा जरूर बताइएगा। अब आज के लिए बस इतना ही, चाहेंगे आपसे इजाजत।

0: कैच द रेन, बारिश के पानी की एक एक बूंद को हमें बचाना है। तो मेरा खास आग्रह है, वर्षा का बूंद बूंद पानी हम मिलकर के बचाएं।
1: जल है तो हम है, आइए घरों ऑफिसों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग तकनीक अपनाएं। रिचार्ज पिट और शाफ्ट बनवाएं, अनुपयोगी बोरवेलों को ठीक करें, जलाशयों से गाद निकालें, अधिक से अधिक पेड़ लगाएं। इस बारिश आइए जुड़े कैच द रेन अभियान से।
2: प्रस्तुत है कार्यक्रम पहलू और गीत, एपिसोड 16, शीर्षक है वफा। एडिट किया भारत सपोरी ने। स्क्रिप्ट, निर्देशन एवं प्रस्तुतकर्ता आरजे किरणी।
3: वफा सिर्फ एक वादा नहीं, एक जज्बा है, जिसे निभाने वाले कम होते हैं और आजमाने वाले हजार। कभी ये मोहब्बत का रूप लेती है, कभी जुदाई का दुख। आज पहलू और गीत में चलिए महसूस करते हैं वफा के हर पहलू को। मैं हूं आपकी रेडियो दोस्त किरणी, आप सुन रहे हैं रेडियो वितस्ता 90.0 FM पर। सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार। मोहब्बत सिर्फ कहना नहीं, मोहब्बत तो निभाने का नाम है। वो एक वादा जो हर मोड़ पर साथ निभाए, कोई चाहे मिले या ना मिले, पर वफा अमर रह जाती है।

जो दिल से मोहब्बत करते हैं वो बेवफाई के बाद भी वफा करते हैं। किसी की यादों में जीना भी तो एक तरह की वफा है, जो सिर्फ मोहब्बत करने वाले समझ सकते हैं।

कुछ मोहब्बतें सिर्फ जुदाई में जीती हैं, कभी एक आंसू बनके, कभी एक कहानी बनके, पर वफा करने वाले कभी शिकवा नहीं करते, बस एक मुस्कुराहट के साथ मोहब्बत को याद करते हैं।

कोई छोड़कर भी चला जाए तो भी वफा करने वाले वफा निभाते हैं। उनके लिए मोहब्बत सिर्फ हासिल करना नहीं, किसी की यादों में जीना भी है।

मोहब्बत सिर्फ लफ्जों का खेल नहीं, ये एक रोशनी है जो दिल से दिल तक जाती है। जिसे सच में प्यार होता है वो हर मोड़ पर साथ निभाता है। जो दिल से वफा करते हैं वो फासलों से नहीं डरते। एक सच्चा आशिक सिर्फ मोहब्बत नहीं करता, वो वफा का हकदार भी बनता है, क्योंकि उसके लिए प्यार सिर्फ हासिल करना नहीं बल्कि निभाना होता है।

कुछ मोहब्बतें मिलने के लिए नहीं होती, कुछ प्रेम कहानियां जुदाई में लिखी जाती हैं। दूर रहकर भी एक दूसरे की यादों में जीना भी तो वफा है। कई बार दूरियां सिर्फ शारीरिक होती हैं, दिल तो एक सा धड़कते हैं। सच्चा प्यार चाहे जितना भी दूर चला जाए, वफा का एहसास जिंदा रहता है, क्योंकि मोहब्बत एक बार होती है और सच्ची मोहब्बत कभी खत्म नहीं होती।

वफा सिर्फ उस वक्त तक नहीं होती जब तक कोई साथ हो। कई बार बेवफा होने वाले भी यादों में वफा छोड़ जाते हैं। जो सच्चा मोहब्बत करता है वो धोखा मिलने के बाद भी वफा करता है, क्योंकि उसके लिए प्यार सिर्फ एक रिश्ता नहीं, एक इबादत होती है। वो दुख से गुजर सकता है मगर अपनी मोहब्बत का दामन नहीं छोड़ता। बस एक ही तमन्ना रहती है कि काश वफा का सिला भी वफा होता।

वफा सिर्फ आशिकों का सिलसिला नहीं, दोस्ती का फर्ज भी होता है। दोस्त वो जो खुद भले ही टूट जाए मगर दोस्ती का वादा न तोड़े, जो अपनी खुशी से पहले दोस्तों का सोचता है वही सच्चा दोस्त होता है। दोस्ती एक मिसाल है जिसमें सिर्फ वफा का दामन पकड़ना पड़ता है। जिसने एक सच्चा दोस्त पा लिया उसने दुनिया का सबसे खूबसूरत रिश्ता जीत लिया, वो रिश्ता जो न खून का मोहताज है ना किस्मत का।

वफा सिर्फ एक वादा नहीं, एक कुर्बानी भी है। कभी किसी की खुशी के लिए खुद को भूल जाना, कभी मोहब्बत में खुद को मिटा देना, ये सिर्फ वही कर सकता है जिसे अपने प्यार से सच्ची वफा हो। मोहब्बत चाहे कमजोर कर दे, मगर वफा इंसान को मजबूत बना देती है, क्योंकि जो दिल से चाहता है वो अपने प्यार के लिए हर कुर्बानी देने को तैयार रहता है।

वफा सिर्फ साथ निभाने का नाम नहीं, कभी कभी इंतजार भी एक तरह की वफा होती है। किसी की एक आहट पर जीना, किसी की एक मुस्कुराहट के लिए साल गुजार देना, कभी वक्त गुजर जाता है मगर इंतजार खत्म नहीं होता। वो जो सच्ची मोहब्बत करते हैं वो उम्मीद नहीं छोड़ते, क्योंकि इंतजार सिर्फ वक्त का नहीं होता, किसी के लौट आने का भी होता है।

0: का।
1: वफा सिर्फ दुख का सबब नहीं, एक सुकून भी है। जब कोई दिल से मोहब्बत करता है तो उसके साथ एक अजब सी तसली होती है। कोई चाहे मिले या ना मिले, मगर वफा का एहसास दिल को सुकून दे जाता है। वफा करने वाले कभी शिकवा नहीं करते, बस मोहब्बत को इबादत की तरह निभाते हैं। मोहब्बत जब सच्ची हो तो वफा दुख नहीं देती, सिर्फ एक गहरा सुकून देती है, क्योंकि प्यार की असली जीत मिलने में नहीं, वफा निभाने में होती है।

ये था पहलू और गीत वफा के नाम। फिर मिलेंगे एक नए पहलू के साथ और एक नए गीत के साथ। मैं हूँ आपकी रेडियो दोस्त किरनी, मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।

आप सुन रहे थे कार्यक्रम पहलू और गीत, एपिसोड 16, शीर्षक था वफा। एडिट रिकॉर्ड किया भारत सपोरी ने, सहयोग राहुल अलियान व निया जैन का। स्क्रिप्ट, निर्देशन एवं प्रस्तुत किया आरजे किरणी ने। ये थी FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता की प्रस्तुति।

0: आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz रेडियो विदस्ता अंबाला का अपना रेडियो। सुनते रहिए अपने पसंदीदा गीत।
1: पेश है कार्यक्रम फौजी भाइयों के लिए जरा याद करो कुर्बानी, रिकॉर्ड किया राहुल लियान ने, प्रस्तुत करेंगे नरेश शर्मा, एडिट व निर्देशन भारत सपोरी।

0: नमस्कार, जय भारत, जय हिंद। FM 90.0 MHz पर आप सुन रहे हैं रेडियो विस्तार, हम सफर जिंदगी का, अंबाला का अपना रेडियो, और मैं हूं आपका रेडियो दोस्त नरेश शर्मा। सबसे बड़ा त्याग क्या है? अपने आप को ही नछावर कर देना। और ये त्याग किया है दोस्तों आपने, क्योंकि आपके कारण ही तो हम चैन की नींद सोते हैं। सरहदों पर आपके होते हुए दुश्मन हमारी तरफ आंख उठाने की जरूरत ही नहीं कर सकता। आपके इस एहसान का बदला तो हम किसी भी तरह नहीं चुका सकते। हाँ, आपके दिल की आवाज बनकर उन तक आपकी आवाज हम पहुंचाकर आपके दिलों को कुछ सुकून तो दे ही सकते हैं। FM 90.0 MHz पर हम हैं रेडियो विस्तार, हम सफर जिंदगी का, अंबाला का अपना रेडियो, और मैं हूं आपका अपना रेडियो हम सफर नरेश शर्मा। हम लेकर आए हैं फौजी भाइयों के लिए एक विशेष कार्यक्रम, जरा याद करो कुर्बानी।
1: जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी।
0: दोस्तों, अगर आप कोई विशेष गीत सुनना चाहते हो या अपने किसी खास को कोई खास गीत सुनाना चाहते हो तो हमें हमारे टेलीफोन नंबर 7056413010 पर कॉल करके बताइए। हम आपके अनुरोध पर आपकी पसंद का गीत आप कहेंगे तो उनके और आपके नाम के साथ और आपके संदेश के साथ प्रसारित करेंगे। गीत के अलावा भी अगर आपके परिवार में किसी का जन्मदिन है या कोई अन्य संदेश आप रेडियो के माध्यम से अपने परिजनों तक पहुंचाना चाहते हैं तो हमें सिर्फ कॉल भर कर दीजिए, बाकी काम हमारा, हम बनेंगे ना आपके दिल के हम सफर। आइए शुरू करते हैं फौजी भाइयों के लिए हमारा विशेष उपहार, जरा याद करो कुर्बानी।

सच में यही होता है। जब कहकर आते हैं कि बस दो चार महीनों में ही वापिस आ रहा हूं, और किसी वजह से छुट्टी पास नहीं होती ना, उधर वो बेकरार होते हैं, इधर आप बेचैन होते हैं। दिल करता है किसी तरह से पंख लग जाएं और उड़कर पहुंच जाएं अपने महबूब की बाहों में, क्योंकि उधर से भी यही आवाज आ रही होती है कि

लेकिन जरूरी तो नहीं कि सब कुछ मन के मुताबिक ही हो। दोस्तों, आपके बलिदान और हिम्मत और त्याग की गूंज धरती की हर धड़कन में सुनाई देती है। आपके दिमाग को कर्तव्य ने बांध रखा होता है, बस दिल को कौन बांध सकता है? आज तो कोई नहीं बांध पाया। उधर उनका नहीं लगता, इधर आपका नहीं लगता, और दोनों दिलों से जो आवाज आती है वो आवाज होती है ये।

देश की सुरक्षा में तैनात फौजी भाइयों, सिर्फ आपके परिवारों की ही नहीं बल्कि पूरे देश की दुआएं तुम्हारे साथ हैं। पिता, भाई, बहन, पत्नी सब आप पर गर्व महसूस करते हैं और आपकी वापसी का बेसब्री से इंतजार करते हैं। और हाँ, इंतजार तो आप भी बेसब्री से करते हैं। खट्टी मीठी कड़वी नमकीन भावनाओं को विराम तो तब मिलता है जब घर से चिट्ठी आती है

आपका समर्पण और साहस हम सबके लिए देशभक्ति का सच्चा उदाहरण है। हमें गर्व है कि विश्व की सर्वश्रेष्ठ फौज हमारी रक्षा कर रही है। आपके साथ साथ आपके परिवारों का समर्पण और त्याग, वाकई ये सब कुछ काबिले तारीफ है। मिलन को आतुर प्रतीक्षारत नयन बिस्तर में अपने कोरों को पोछते हुए दिल से लगाकर तुम्हारी तस्वीर को चूमकर बुदबुदाते हैं

हर फौजी भाई, चाहे वो किसी भी बटालियन में हो, किसी भी रैंक पर हो, हर रोज हमारी रक्षा के लिए अपने प्राणों की बाजी लगाते हैं। आपके इस साहस को पूरा देश प्रणाम करता है। हमारे लिए तो आप आदर्श हो ही, आप किसी और के भी तो हीरो हो जिन्होंने

फौजी भाइयों, पूरे भारतवासी आपके साथ खड़े हैं। आपकी हिम्मत और जज्बा हर दिल में बसता है, हमारे लिए और आपके लिए प्यार, मोहब्बत, घर परिवार, लेकिन आपके लिए तो सब कुछ सिर्फ और सिर्फ देश सेवा है। इसके लिए आप कुछ सोचते ही नहीं, और ना ही आपके जीवन में शायद इसके अलावा कोई बात होती है। हम आपकी इस सोच की कदर करते हैं। अपने राष्ट्र के लिए सब कुछ छोड़ दिया है, कुछ भी तो नहीं इसके अलावा जो आपके दिलो दिमाग पर हो, इसीलिए उनकी शिकायत आपसे अक्सर ये रहती है।

0: सभी श्रोताओं को हमारा प्यार भरा नमस्कार। मैं हूं ठाकुर वर्मा।
1: और मैं हूं विकास शर्मा।
0: आज हम एक गाना सजना रिलीज कर रहे हैं रेड प्रो एंटरटेनमेंट की ओर से, जिसको अपने सुरों से सजाया है विपन कुमार ने,
1: संगीत से सजाया है रिएक्स ने,
0: निर्माता है विकास शर्मा
1: और निर्देशित किया है ठाकुर वर्मा ने।
0: ये गीत हम FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता के श्रोताओं के लिए प्रस्तुत कर रहे हैं। आपको कैसा लगा ये हमें जरूर बताइएगा। आपका फीडबैक हमारे लिए बहुत अमूल्य है। प्रस्तुत है ये गीत सजना।
2: Your reaction.

आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz पर रेडियो विदस्ता, अंबाला का अपना रेडियो। सुनते रहिए अपने पसंदीदा गीत।

आर लिसनिंग FM 90.0 MHz रेडियो विदस्ता। अंबाला कैंट्स फर्स्ट कम्युनिटी रेडियो लाइसेंस्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया।

0: एक ही ताज महल, एक ही लता मंगेशकर, एक ही रेडियो मितस्ता, हम सफर जिंदगी का।
1: ओ टाई दिन न जवानी नल चल दी
0: 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर। अंबाला कैंट से हमारी प्रसारण सुनते रहिए।

आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz पर रेडियो विदस्ता, अंबाला का अपना रेडियो। सुनते रहिए अपने पसंदीदा गीत।

करें अपने दिन की शुरुआत रेडियो विदस्ता के गीतों के साथ। 90.0 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो विदस्ता, अंबाला का अपना रेडियो।

0: सुनते रहो अपने पसंदीदा की।
1: वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। आप जी सुन रहे हो 90.0 FM ते रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी दा। आप दा अपना रेडियो, आप जी दी आवाज दिल तो। रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी दा।
2: हाँ जी, सत श्री अकाल जी सारे नूं। शब्द नेक कमाईया ते इस शब्द नूं आवाज दित्ती है सिंगर बॉबी सिंह जी ने, ते लिखिया सुरिंदर सिरताज जी ने, ते इस शब्द की वीडियो जे एस कलवाना जी ने की है। इस वीडियो च काम करने वाले कलाकार पुनीत खन्ना जी, हरदयाल चंद जी, इंदर राजोसन जी, निर्वैर चहल जी ते होर कलाकार। ते इस शब्द नूं प्रोड्यूस किया है हरबंस लाल खन्ना जी ने। ते तुसी इस शब्द की वीडियो भी देख सकते हो नानक गुरबाणी 20 यूट्यूब चैनल ते जाके। शब्द का आनंद माणो ते सब नूं शेयर करो। थैंक यू सो मच।

0: छोड़ो हाथ छोड़ो,
1: देखो दिल न तोड़ो,
0: और छोड़ो हाथ छोड़ो,
1: छोड़ दिया तो हाथ मलोगे समझे,
0: अज समझे।

0: हो रहना किसी के,
1: क्या करना है दीदी?
0: अरे हो रहना किसी के,
1: हम रहे तो याद करोगे।

आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz रेडियो विदस्ता अंबाला का अपना रेडियो। सुनते रहिए अपने पसंदीदा गीत।

यो सा FM 90.0 MHz के प्रसारण रेडियो वितस्ता हम सफर जिंदगी का हमने उम्मीद से के हमारा प्रसारण आपने पसंद आ रहा होगा। ऐसे ही अच्छे अच्छे गीत सुनने खातर सुनते रहिए FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता हम सफर।

0: ही ताज महल, एक ही लता मंगेशकर, एक ही रेडियो मितस्ता, हम सफर जिंदगी का।
1: उठाई दिन न जवानी नल चल दी
0: 90.0 मेगाहर्ट्ज पर। अम्बाला कैंट से हमारे प्रसारण सुनते रहिए

0: تُہۍ چھِو بوزان 90.0 ریڈیو وِتستا، ہم سفر زندگی ہُنٛد۔
1: آنکھوں میں

सुनिए और सुनाइए, रेडियो विविधता सुनना भूल ना जाइए। आपका रेडियो आपकी अपनी आवाज, रेडियो विविधता 90.0 FM पर हर रोज सुनिए मनोरंजन दिन भर और साथ में पल पल की खबर देता है आपको सिर्फ और सिर्फ रेडियो विविधता, आपका अपना रेडियो आपकी आवाज दिल से।

0: एक ही दालच में, एक ही लता मंगेशकर, एक ही रेडियो मितस्ता, हम सफर जिंदगी का।
1: ओ ढाई दिन न जवानी नल चल दी
0: 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर। अम्बाला कैंट से हमारी प्रसारण।

0: रेडियो वितस्ता FM 90 की ओर से सभी विज्ञापन दाताओं के लिए खुशखबरी। किसी भी त्योहार या स्पेशल ओकेजन पर विज्ञापन या शुभकामनाएं संदेश देने पर वितस्ता रेडियो की ओर से दिया जा रहा भारी डिस्काउंट। ज्यादा जानकारी के लिए अभी कॉल करिए 7056413010 पर।
1: कैच द रेन, बारिश के पानी की एक एक बूंद को हमें बचाना है, तो मेरा खास आग्रह है वर्षा का बूंद बूंद पानी हम मिलकर के बचाएं।
2: जल है तो हम है, आइए घरों ऑफिसों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग तकनीक अपनाएं। रिचार्ज पिट और शाफ्ट बनवाएं, अनुपयोगी बोरवेलों को ठीक करें, जलाशयों से गाद निकालें, अधिक से अधिक पेड़ लगाएं। इस बारिश आइए जुड़े कैच द रेन अभियान से।

0: सदियों का सफर तय करके जो बहती आई है वो मोहब्बत की कहानी सुनाने आई है। ये वितस्ता की लहरें हैं जनाब, जो रेडियो की तरंगों से दिलों को दिलों से मिलाने आई है, दिलों को दिलों से मिलाने आई है।
1: नमस्कार, आप सभी प्यारे और अजीज श्रोताओं को एक बहुत ही खूबसूरत सुरमई दोपहर। मैं हूं आपके साथ आपकी रेडियो दोस्त कृष्णा।
0: सभी श्रोताओं को मेरा प्यार भरा नमस्कार, और मैं हूं आपके दिलों की धड़कनों को महसूस करने वाला आपका हमसफर भरत सोपोरी। आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना चाहिता स्टेशन FM 90.0 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो वितस्ता। हम सफर जिंदगी का, आपके जीवन का प्रवाह, और वक्त हो चला है आपके सबसे पसंदीदा और सदाबहार शो का, जिसका नाम है आपकी फरमाइश।
1: बिल्कुल सही कहा भारत जी। वैसे भी जब भी फरमाइश की बात आती है तो लोगों को लगता है कि बस कुछ चुनिंदा गाने बजेंगे और सिलसिला थम जाएगा, लेकिन हमारे रेडियो वितस्ता का मिजाज थोड़ा अलग है ना, है ना?
0: बिल्कुल कृष्ण, हम यहाँ सिर्फ रेडियो पर आकर गाने नहीं बजाते। गाना बजाना तो एक जरिया है, असल में हम आपके दिल के जज्बातों को, आपकी दबी हुई भावनाओं को शब्दों का रूप देकर आप सभी तक पहुँचाते हैं।
1: हाँ दोस्तों, हमारा मकसद सिर्फ मनोरंजन नहीं बल्कि इन रेडियो तरंगों के माध्यम से एक ऐसा पुल बनाना है जहाँ दूरियाँ मिट सके। हम तो बस एक जरिया है दिलों को दिलों से जोड़ने का। आपकी खुशियाँ, आपकी यादें और आपकी मोहब्बत सब कुछ सिमट कर लाता है यह शो।
0: तो बस अपने दिल के तार हमारे साथ जोड़ लीजिए, क्योंकि आपकी फरमाइशों का पिटारा अब खुलने वाला है। तो चलिए सुरों के इस सुहाने सफर का आगाज करते हैं और आज की पहली फरमाइश लेते हैं। पहली फरमाइश हमारे पास आई है गांव कुमार हेडा सहारनपुर उत्तर प्रदेश से। भेजने वाले श्रोता है सईद मसरूर। सईद मसरूर सुनना चाहते हैं फिल्म तेरे घर के सामने से गीत। गीत के बोल है तेरे घर के सामने एक घर बनाऊंगा। इस गीत को आवाज दी है मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर जी ने। सईद मसरूर के साथ सुनने वाले अन्य श्रोता है शाइना हसन, अक्सा, नाजिया, आफिया, इब्राहिम, सद्दाम और अदीब। आइए प्रस्तुत है इनका ये फरमाइशी गीत और करते हैं आगाज आज के फरमाइशी गीतों के सफर का।

0: पेश है अगली फरमाइश जो हमारे पास आई है पिंड तेजा मोड़ी अंबाला से। भेजने वाले श्रोता है बंसीलाल संधु। बंसीलाल संधु के साथ सुनने वाले अन्य श्रोता है कबीर सिंह संधु, जजबीर सिंह संधु, वरनीत कौर संधु, पवनीत कौर संधु और सारा संधु परिवार। ये सभी सुनना चाहते हैं फिल्म लावारिस का गीत। गीत के बोल हैं, काहे पैसे पे इतना गुरूर करे है, जिसे अपनी मधुर आवाज दी है किशोर कुमार ने। तो लीजिए पेश है इन सभी की फरमाइश का ये मधुर सा गीत।
1: चार पैसे क्या मिले, क्या मिले भाई क्या मिले, खुद को समझ बैठे खुदा, वो खुदा ही जाने अब होगा

आप सभी श्रोताओं की नजर एक और फरमाइश जो हमारे पास अंबाला छावनी से आई है, भेजने वाले श्रोता है कैप्टन अमरजीत शर्मा और उनका परिवार। ये सभी सुनना चाहते हैं फिल्म जहां प्यार मिले से गीत। गीत के बोल है चले जा चले जा। इस गीत को आवाज दी है सुमन कल्याणपुर और मोहम्मद रफी साहब ने। आइए पेश है कैप्टन अमरजीत शर्मा और उनके परिवार का ये पसंदीदा नगमा।

लेते हैं अगली फरमाइश जो हमारे पास एक फोन कॉल के जरिए आई है, और हमारे पास ये फरमाइश भेजी है संजीव कुमार राणा खेलन से। ये सुनना चाहते हैं फिल्म रतन से गीत, गीत के बोल है अखियां मिला के जिया भरमा के। इस गीत को आवाज दी है जोरा भाई अमाला वाली ने। आइए प्रस्तुत है ये फरमाइशी गीत।

0: लेते हैं अगली फरमाइश जो हमारे पास आई है नलेश्वर नगर नरवेल महाराष्ट्र से। भेजने वाले श्रोता है PS नहावकर, निर्मला नहावकर, विशाल नहावकर, मलकापुर से नारायण इंगले, सुपान तायड़े, राजकुमार खर्चे, आशीष मुहिरकर। ये सभी सुनना चाहते हैं फिल्म जानवर का गीत। गीत के बोल हैं, मेरी मोहब्बत जवा रहेगी। इसको अपनी आवाज दी है मोहम्मद रफी सर ने। तो दीजिए पेश है इन सभी की फरमाइश का ये गीत।
1: मेरी मोहब्बत जवा

सुनाते हैं आप सभी को एक और फरमाइश जो हमारे पास आई है सेक्टर 18 जगाधरी जिला यमुनानगर हरियाणा से। भेजने वाले श्रोता है विनय मोहन खारवा। ये सुनना चाहते हैं फिल्म अमर अकबर एंथोनी से गीत। गीत के बोल है अनहोनी को होनी कर दे। इस गीत को आवाज दी है महेंद्र कपूर, किशोर कुमार और अन्य कलाकारों ने। विनय मोहन खारवन के साथ सुनने वाले अन्य श्रोता है मीनाक्षी, पलोमा व डॉक्टर ईशानी। आइए सुनते हैं ये फरमाइशी गीत।

तो चलते हैं अगली फरमाइश की तरफ जो हमारे पास आई है मेरठ से। भेजने वाले श्रोता हैं किरण और उनके साथ अन्य श्रोता हैं पिंकी, सुमन और ममता। ये सभी सुनना चाहते हैं फिल्म आया सावन झूमके का ये गीत। गीत के बोल हैं ये शमा तो जली रोशनी के लिए। तो पेश है इनकी फरमाइश का ये खूबसूरत सा गीत।

आप सभी के नाम एक और फरमाइश जो हमारे पास आई है मुंबई महाराष्ट्र से भेजने वाली श्रोता है गीता सुनीता किरण अमित राजेश ये सभी सुनना चाहते हैं फिल्म दुल्हन वही जो पिया मन भाई से गीत गीत के बोल हैं ले तो आए हो सपनों के गांव में आइए प्रस्तुत है ये फरमाइशी गीत

तो लेते हैं अगली फरमाइश जो हमारे पास आई है बेंगलोर से। भेजने वाली श्रोता है प्रेरणा, दीनू, पिंकी और अनूप। ये सभी सुनना चाहते हैं फिल्म जानी दुश्मन का गीत। गीत के बोल हैं तेरे हाथों में पहना के चूड़ियां, जिसे अपनी आवाज से संवारा है मोहम्मद रफी और आशा भोसले ने। तो पेश है इन सभी की फरमाइश का ये गीत।

आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz पर रेडियो विद्यास था हम सफर जिंदगी का आपके जीवन का प्रवाह जारी है। कार्यक्रम आपकी फरमाइश। अगर आपने आज का ये कार्यक्रम पहली बार सुना है और आप इस कार्यक्रम का हिस्सा बनना चाहते हैं, आप भी अपनी फरमाइश भेज सकते हैं किसी पुरानी हिंदी फिल्म के गीत के लिए, हरियाणवी या पंजाबी गीत के लिए। आपको लिखना होगा गीत के बोल और अपना नाम, साथ में आप कहां से लिख रहे हैं। अगर आपके साथ आपके परिवारजन या आपके दोस्त सुनना चाहते हैं, आप उनके नाम भी स्पष्ट लिखें और हम उन सभी नामों को आपके फरमाइशी गीत के साथ बोल देंगे। आपको अपनी फरमाइश भेजनी होगी हमारे स्टूडियो के नंबर पर जो है 7056413010। नंबर एक बार फिर 7056413010। हमें आपकी फरमाइशों का इंतजार रहेगा। लेते हैं अगली फरमाइश जो हमारे पास आई है गांव जुगुड़ी जिला यमुनानगर से। भेजे वाले श्रोता है रणधीर भांगड़। इनके साथ सुनने वाले अन्य श्रोता है गुरमेजो, गौरव, परवीन, युगम और वीरेन। ये सभी सुनना चाहते हैं फिल्म दूसरा आदमी से गीत। गीत के बोल है बाहों में बाहें डालकर खेलने का मौसम आया। इस गीत को आवाज दी है लता मंगेशकर और किशोर कुमार ने। आइए प्रस्तुत है इन सभी का ये फरमाइशी गीत।

ऐसे अगली फरमाइश जो हमारे पास आई है मुजफ्फरपुर बिहार से, भेजने वाले श्रोता हैं आर्यन राज, रोहित राज, पीयूष कुमार और हैप्पी आनंद। ये सभी सुनना चाहते हैं फिल्म मिली का गीत। गीत के बोल हैं, आए तुम याद मुझे, जिसे अपनी आवाज दी है किशोर कुमार ने। तो लीजिए पेश है इनकी फरमाइश का ये गीत।

आप सभी श्रोताओं के लिए ले आ रहे हैं एक और फरमाइश जो हमारे पास आई है खेतल राजस्थान से। भेजने वाले श्रोता है लवीना शर्मा, धीरज शर्मा, हिताक्षी शर्मा और ओम शर्मा। ये सभी सुनना चाहते हैं फिल्म अखियों के झरोखों से गीत। गीत के बोल भी है अखियों के झरोखों से। आइए, प्रस्तुत है इन सभी का ये फरमाइशी गीत।

0: लेते हैं इस कार्यक्रम की आखिरी फरमाइश जो हमारे पास आई है धनौरी तेलीवाला उत्तराखंड से। भेजने वाले श्रोता है निशा सलमानी, इनके साथ अन्य श्रोता है नौशाद सलमानी, बेबी आलिया और आयान बाबू। ये सभी सुनना चाहते हैं फिल्म रोटी का गीत। गीत के बोल हैं, गोरे रंग पे न इतना गुमान कर। इस गीत को अपनी आवाज दी है लता मंगेशकर और किशोर कुमार सर ने। तो लीजिए पेश है इनकी पसंद का ये गीत। इसी के साथ मुझे दीजिए आज्ञा, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।
1: तो श्रोताओं, आज का कार्यक्रम अब यही हो रहा है समाप्त। आप आनंद लीजिए इस आखिरी गीत का और हमें दीजिए इजाजत। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात करेंगे, तब तक आप खुश रहिए, खुशहाल रहिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।

0: कैच द रेन, बारिश के पानी की एक एक बूंद को हमें बचाना है। तो मेरा खास आग्रह है, वर्षा का बूंद बूंद पानी हम मिलकर के बचाएं।
1: जल है तो हम है, आइए घरों ऑफिसों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग तकनीक अपनाएं। रिचार्ज पिट और शाफ्ट बनवाएं, अनुपयोगी बोरवेलों को ठीक करें, जलाशयों से गाद निकालें, अधिक से अधिक पेड़ लगाएं। इस बारिश आइए जुड़े कैच द रेन अभियान से।
2: मेरा एक जिद्दी पड़ोसी है, पूरी कॉलोनी ने सोलर पैनल लगवा लिए हैं, पर वो मानने को तैयार ही नहीं था कि सच में बिल जीरो आ सकता है। मैंने कहा बेटा, नाम ही है पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। फिर एक एक करके सबका बिजली बिल जीरो आने लगा, तब बोला अब लगवा ही लेता हूँ। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
3: हर घर सूर्य घर।
4: बढ़ाए अपना बिजनेस, एडवरटाइज करें FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता पर और पाए एनिवर्सरी डिस्काउंट। देर ना करें और अभी फोन करें 7056413010 पर।
5: हम हैं अम्बाला कैंट स्थित सामुदायिक रेडियो FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता। हम सफर जिंदगी का अम्बाला का अपना रेडियो।

0: You are listening 90.0 FM Radio Vidasta Hum Safar Zindagi Ka, a community radio licensed by Ministry of Information and Broadcasting, Government of India.
1: Catch the rain. बारिश के पानी की एक एक बूंद को हमें बचाना है, तो मेरा खास आग्रह है वर्षा का बूंद बूंद पानी हम मिलकर के बचाएं।
2: जल है तो हम है, आइए घरों ऑफिसों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग तकनीक अपनाएं, रिचार्ज पिट और शाफ्ट बनवाएं, अनुपयोगी बोरवेलों को ठीक करें, जलाशयों से गाद निकालें, अधिक से अधिक पेड़ लगाएं। इस बारिश आइए जुड़े कैच द रेन अभियान से।

0: कैच द रेन, बारिश के पानी की एक एक बूंद को हमें बचाना है। तो मेरा खास आग्रह है, वर्षा का बूंद बूंद पानी हम मिलकर के बचाएं।
1: जल है तो हम है, आइए घरों ऑफिसों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग तकनीक अपनाएं। रिचार्ज पिट और शाफ्ट बनवाएं, अनुपयोगी बोरवेलों को ठीक करें, जलाशयों से गाद निकालें, अधिक से अधिक पेड़ लगाएं। इस बारिश आइए जुड़े कैच द रेन अभियान से।

आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz पर रेडियो विदस्ता, अंबाला का अपना रेडियो। सुनते रहिए अपने पसंदीदा गीत।

सुनन खातर हरियाणवी सोंग करो रेडियो वितस्ता नू फोन और अपना मूड कर लियो ओन सेट कर दियो 90.0 ऑन योर फोन और मलै दियो 7056413010 पा फोन।

0: ये अंबाला कैंट का सामुदायिक रेडियो FM 90.0 मेगाहर्ट्ज़ से रेडियो विदस्ता है। हम सफर जिंदगी का अंबाला का अपना रेडियो।
1: शुक्रिया करम मेहरबानी दोस्तों, जिंदगी हसीन है

आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz पर रेडियो विदस्ता, अंबाला का अपना रेडियो। सुनते रहिए अपने पसंदीदा गीत।

आप सुन रहे हैं FM 90.0 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो विकसता। हम सफर जिंदगी का अंबाला का अपना रेडियो, सुनते रहे अपने पसंदीदा गीत।

करें अपने दिन की शुरुआत रेडियो वितस्ता के गीतों के साथ। 90.0 मेगाहर्ट्ज रेडियो वितस्ता, अंबाला का अपना रेडियो।

0: क्या हुआ, परेशान क्यों हो?
1: क्या बताऊं, मैं चाहता हूं मेरा व्यापार पूरे अंबाला तक पहुंचे।
0: अरे तो इसमें चिंता कैसी, आज ही आप अपना विज्ञापन FM 90.0 रेडियो वितस्ता पर दें। FM 90.0 रेडियो वितस्ता अब सभी अंबाला वासियों की दिल की धड़कन बन चुकी है।
1: अच्छा, बहुत खूब, अभी संपर्क करता हूँ।
0: अभी कॉल करें 7056413010 7056413010 पर।
2: वितस्ता रेडियो, आपकी जिंदगी की रवानी।
3: नब्बे अशारिया सिफर FM पर सामाइन की खिदमत में पेश है रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का।
4: यू आर लिस्निंग 90.0 FM रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का।

सुनिए मोहम्मद अजीज के दिल छूने वाले गाने हमारे FM 90.0 मेगाहर्ट्ज पर। उनकी आवाज और संगीत आपको ले जाएंगे पुराने सुनहरे दिनों की यादों में, और साथ ही आनंद लीजिए इस संगीत सफर का।

सुने अपने पसंदीदा गाने सिर्फ 90.0 मेगाहर्ट्ज रेडियो वितस्ता पर। अंबाला कैंट का अपना रेडियो। रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का।

ये अंबाला कैंट का सामुदायिक रेडियो FM 90.0 मेगाहर्ट्ज रेडियो विस्तार है। हम सफर जिंदगी का अंबाला का अपना रेडियो।

आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz पर रेडियो विदस्ता, अंबाला का अपना रेडियो। सुनते रहिए अपने पसंदीदा गीत।

0: You are listening 90.0 FM, Radio with a Star, Hamsafar Zindagi Ka.
1: आप सुन रहे हैं अंबाला कैंट का पहला कम्युनिटी रेडियो FM 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर, रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का।

0: सुनते रहिए 90.0 FM रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का।
1: तुसी सुन रहे हो अंबाला दा अपने।

0: बढ़ाए अपना बिजनेस, एडवरटाइज करें FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता पर और पाएं एनिवर्सरी डिस्काउंट। देर ना करें और अभी फोन करें 7056413010 पर।
1: हम हैं अंबाला कैंट स्थित सामुदायिक रेडियो FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता। हम सफर जिंदगी का अंबाला का अपना रेडियो।
2: रेडियो वितस्ता FM 90 की ओर से सभी विज्ञापन दाताओं के लिए खुशखबरी।

0: स्क्रीन। किसी भी त्योहार या स्पेशल ओकेजन पर विज्ञापन या शुभकामना संदेश देने पर वितस्ता रेडियो की ओर से दिया जा रहा भारी डिस्काउंट। ज्यादा जानकारी के लिए अभी कॉल करिए 7056413010 पर।
1: आप सुन रहे हैं FM 90.0 मेगाहर्ट्ज रेडियो वितस्ता, अंबाला का अपना रेडियो। सुनते रहिए अपने पसंदीदा गीत।

ये अंबाला कैंट का सामुदायिक रेडियो FM 90.0 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो विदस्ता है। हम सफर जिंदगी का अंबाला का अपना रेडियो।

0: सभी श्रोताओं को हमारा प्यार भरा नमस्कार। मैं हूं ठाकुर वर्मा।
1: और मैं हूं विकास शर्मा।
0: आज हम एक गाना सजना रिलीज कर रहे हैं रेड प्रो एंटरटेनमेंट की ओर से, जिसको अपने सुरों से सजाया है विपन कुमार ने,
1: संगीत से सजाया है रिएक्स ने,
0: निर्माता है विकास शर्मा
1: और निर्देशित किया है ठाकुर वर्मा ने।
0: ये गीत हम FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता के श्रोताओं के लिए प्रस्तुत कर रहे हैं। आपको कैसा लगा ये हमें जरूर बताइएगा। आपका फीडबैक हमारे लिए बहुत अमूल्य है। प्रस्तुत है ये गीत सजना।
2: Your reaction.

रेडियो विदस्ता 90.0 मेगाहर्ट्ज पर घर घर की आवाज रेडियो विदस्ता। हम सफर जिंदगी का

वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। आप जी सुन रहे हो 90.0 FM ते रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी दा। आप दा अपना रेडियो, आप जी दी आवाज दिल तो। रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी दा।

0: dala झमेल। एक है लता मंगेशकर, एक है रेडियो मितस्ता, हम सफर जिंदगी का।
1: उठाई दिन न जवानी नल चल दी
0: 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर। अंबाला कैंट से हमारी प्रसारण सुनते रहिए।

करें अपने दिन की शुरुआत रेडियो वितस्ता के गीतों के साथ। 90.0 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो वितस्ता, अंबाला का अपना रेडियो।

सुनन खातर हरियाणवी सोंग करो रेडियो वितस्ता नू फोन और अपना मूड कर लियो ओन सेट कर दियो 90.0 ओन योर फोन और मले दियो 7056413010 पा फोन।

0: कैच द रेन, बारिश के पानी की एक एक बूंद को हमें बचाना है। तो मेरा खास आग्रह है, वर्षा का बूंद बूंद पानी हम मिलकर के बचाएं।
1: जल है तो हम है, आइए घरों ऑफिसों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग तकनीक अपनाएं। रिचार्ज पिट और शाफ्ट बनवाएं, अनुपयोगी बोरवेलों को ठीक करें, जलाशयों से गाद निकालें, अधिक से अधिक पेड़ लगाएं। इस बारिश आइए जुड़े कैच द रेन अभियान से।
2: सुनते रहिए 90.0 FM रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का।
3: पेश है प्रोग्राम शामे गजल एपिसोड 2, कलाम भारती रैना, पेश कर रहे हैं आरजे किरनी।
2: सभी सुनने वालों को मेरा प्यार भरा नमस्कार, मैं हूं आपकी रेडियो दोस्त किरनी। पेश है प्रोग्राम शामे गजल। आज का प्रोग्राम भारती रैना की लिखी गजलों पर मबनी है, जो ओरिजिनली रैनावारी श्रीनगर कश्मीर की बाशिंदा है, अब जम्मू में कयाम पजीद है। उनकी लिखी गई गजलों को अपनी आवाज से सजाया है कश्मीर के मायोनाज गुलोकार कैसर निजामी साहब और सुमन पंडिता जी ने। जिंदगी की कहानी में हर पल एक नया रंग है, हम ना रहे तेरे तलबगार पर तू हमेशा संग है, हर मोड़ पर नया सफर साथ संग।

गुर्बत की राह में मजबूर है हम, जिंदगी के सितम से बेखबर है हम, पर दिल में उम्मीद की एक किरण है कि मुश्किल को सहकर अपनी मंजिल पा लेंगे।

कुदरत की तराशी गजल हूँ मैं, दिल के हर धड़कन में बसी कहानी। लोग समझते हैं कुछ नादान हूँ मैं, मेरी शायरी में छुपी है एक मुस्कुराहट रवानी।

0: हूँ मैं, कुदरत की तराशी हूँ गजल हूँ।
1: जिंदगी के कुछ पल है ऐसे जिनमें बसी है मीठी मीठी यादें, दिल को छू जाती है वो मीठी से यादों का अफसाना।

अभी आप सुन रहे थे प्रोग्राम शामे गजल। उम्मीद करते हैं आपको ये गजलों का प्रोग्राम पसंद आया होगा। आप अपना फीडबैक 7056413010 पर भेज सकते हैं। मुझे दीजिए इजाजत, अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।

सुन रहे थे प्रोग्राम शाम गजल एपिसोड 2। आज का प्रोग्राम भारती रैना की लिखी गजलों पर मबनी था। पेश किया आरजे किरनी ने, एडिटिंग दीपक कश्यप, हिदायतकार भारत सोपोरी। ये थी FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता की पेशकश।

0: कैच द रेन, बारिश के पानी की एक एक बूंद को हमें बचाना है। तो मेरा खास आग्रह है, वर्षा का बूंद बूंद पानी हम मिलकर के बचाएं।
1: जल है तो हम है, आइए घरों ऑफिसों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग तकनीक अपनाएं, रिचार्ज पिट और शाफ्ट बनवाएं, अनुपयोगी बोरवेलों को ठीक करें, जलाशयों से गाद निकालें, अधिक से अधिक पेड़ लगाएं। इस बारिश आइए जुड़े कैच द रेन अभियान से।
2: 90.0 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का, सुनते रहिए दिल से।
0: कैच द रेन, बारिश के पानी की एक एक बूंद को हमें बचाना है। तो मेरा खास आग्रह है, वर्षा का बूंद बूंद पानी हम मिलकर के बचाएं।
1: जल है तो हम है, आइए घरों ऑफिसों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग तकनीक अपनाएं, रिचार्ज पिट और शाफ्ट बनवाएं, अनुपयोगी बोरवेलों को ठीक करें, जलाशयों से गाद निकालें, अधिक से अधिक पेड़ लगाएं। इस बारिश आइए जुड़े कैच द रेन अभियान से।
3: बधाई हो ताऊ, अपना मनोज 12वीं में अच्छे नंबर से पास हो गया।
4: वाह बेटा, नाम रोशन कर दिया गांव का।
3: बस आप लोगों का आशीर्वाद है।
4: अब आगे क्या करने का सोचा है?
3: आगे का तो अभी फिलहाल
4: रे, अब उसे हरियाणा की किसी ITI में दाखिला दिला दे, ताकि वक्त रहते अपने हुनर को सवारे और जीवन में आगे बढ़ सके। प्रदेश के युवा राज्य की 197 सरकारी व 180 प्राइवेट ITI में 1 या 2 साल के कोर्सों में एडमिशन ले सकते हैं, जिसमें कुल 93 ट्रेड्स में 80,000 से ज्यादा सीटें हैं।
5: अधिक जानकारी हेतु www.itiharyana.gov.in पर लॉगिन करें अथवा निकटतम ITI में संपर्क करें।

प्रस्तुत है कार्यक्रम रेट्रो हिट्स एपिसोड 15। कार्यक्रम को रिकॉर्ड किया भारत सोपोरी ने, सहयोग राहुल अलियान का, निर्देशन एवं प्रस्तुतकर्ता आरजे किरणी।

सभी सुनने वालों को किरणी का प्यार भरा नमस्कार। पेश है कार्यक्रम रेट्रो हिट्स, जहां हम लेकर आते हैं उन गीतों के महफिल जो दिल के काफी करीब है। आज के इस कार्यक्रम में पेश है कुछ रोमांटिक ड्यूट्स, वो गीत जो दो आवाजों में पिरोए गए और हर लफ्ज हर सुर में मोहब्बत की खुशबू है। तो चलिए आइए एक बार फिर चलते हैं उस जमाने में जब गीत सिर्फ सुने नहीं जाते थे, महसूस भी किए जाते थे।

0: आप सुन रहे थे कार्यक्रम रेट्रो हिट्स एपिसोड 15, रिकॉर्ड किया भारत सोपोरी ने, सहयोग राहुल अलियान का, निर्देशित एवं प्रस्तुत किया आरजे किरणी ने। ये थी FM 90.0 मेगाहर्ट्ज रेडियो वितस्ता की प्रस्तुति।
1: कैच द रेन, बारिश के पानी की एक एक बूंद को हमें बचाना है, तो मेरा खास आग्रह है वर्षा का बूंद बूंद पानी हम मिलकर के बचाएं।
2: जल है तो हम है, आइए घरों ऑफिसों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग तकनीक अपनाएं, रिचार्ज पिट और शाफ्ट बनवाएं, अनुपयोगी बोरवेलों को ठीक करें, जलाशयों से गाद निकालें, अधिक से अधिक पेड़ लगाएं। इस बारिश आइए जुड़े कैच द रेन अभियान से।

0: You are listening 90.0 FM, Radio with a Star, Hum Safar Zindagi Ka.
1: Vaheguru Ji Da Khalsa, Vaheguru Ji Di Fateh. आप जी सुन रहे हो 90.0 FM ते रेडियो वितस्ता हम सफर जिंदगी दा आप दा अपना रेडियो आप जी दी आवाज दिल तो रेडियो वितस्ता हम सफर जिंदगी दा

रेडियो विदस्ता 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर, घर घर की आवाज, रेडियो विदस्ता। हम सफर जिंदगी का।

जिंदगी क्या इसी को कहते हैं, कतरा कतरा बह जाए और तुम देखते रहो, सुलगते रहो, सिसकते रहो, मिटते रहो, फना होते रहो। आज थर थराती रही मेरी रूह, रूह से मिलकर, इसलिए गीली हुई मेरी आंखें बरसों ब

भी ख्वाब देखे। मौसम खजां के आते आते फिर रिश्ते जोड़े। तुम्हारे उदास चेहरे की तस्वीर खींची, घर की कच्ची दीवार पे सजाई, टपकती बारिश की बूंदों से बचा के रखा। तेज हवाओं के झोंकों से महफूज रखने की कोशिश भी की। सुना है तस्वीरें अक्सर बोलती हैं, काश ये तस्वीर आज मेरे लिए बोलती।

दिल तो है अपने पास, पर तुम्हारे बिना है ये बहुत उदास। ये दिल लगता नहीं तुम्हारे बगैर, हम क्या करें। आज दिल में उमड़े हैं फिर से सोए हुए जज्बात, एक बस तुम्हें याद करके। दिल मासूम है, भटकता है, बहकता है और बेइंतहा तुम्हें याद करता है। अब के सावन में बर्फ पिघलते ही मेरे पतझड़ की वीरानी को दूर करने के लिए शायद तुम लौट आओगे, इस दिल का दर्द मिटाने के लिए।

इस कारवां में छूट गए मेरे अपने, अपने जो अब पराए हो गए। जीवन के पतझड़ के मौसम की तरह यूं ही गुजरता रहा। प्यार के मौसम देखे भी और खोए भी। अब हमारे अपने रास्ते ही अनदेखे। प्यार के मौसम देखे भी और खोए भी। अब हमारे अपने रास्ते ही अनदेखे।

छुप जाती है और अक्सर लौट आती हो तुम शाम और सहर मेरी दुनिया में, छू जाते हो मेरी उम्मीदों को, पिघल जाते हो मेरे साथ इस बर्फीले मौसम में, अपने जज्बात कई हादिसात लिए। तुम खुशबू हो, रंगी नूर हो, भीगते मौसम में भीगती बारिश का एहसास हो, तुम मेरे हो।

ये वो एहसास है जो अक्सर मेरी दहलीज पे दस्तक देकर यूं ही चला जाता है, बिना कुछ कहे, बिना कुछ सुने। मैं जानता हूं सर्द मौसम की ठंडी हवाएं तुम्हें छूकर मेरी गली से गुजरती हैं शब रोज। मेरी अनदेखे अनसुने इन रास्तों की पहचान अब कौन कराए, जबकि इन अंधेरी राहों पे चलते

आप सुन रहे थे एफएम 90.0 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो विदसा के प्रसारण और आज के हमारे प्रसारण आप यहीं पर संपन्न होते हैं। हम आपकी सेवा में सुबह 6 बजे से रात के 9 बजे तक रहते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारे ये कोशिश, हमारे कार्यक्रम पसंद आते होंगे और उन सभी श्रोताओं का बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद जो हमें अपने फीडबैक भेजते हैं हमारे कार्यक्रमों के बारे में और सुझाव भी भेजते हैं। आप सभी से हम अनुरोध करते हैं, आप भी सुझाव भेज सकते हैं। हम हर दिन आपको हमारे स्टूडियो का नंबर नोट कराते हैं, आज भी कराएंगे, और क्योंकि आपका अगर फीडबैक हमारे पास पहुंचता है तो हम और सही तरीके से, सटीक तरीके से कार्यक्रमों को तैयार कर आप तक पहुंचाने का प्रयत्न हर दिन करते हैं। आज के लिए बस इतना ही। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सुहाना सफर, पेश कर रहे थे रमेश मराठा। स्टूडियो की घड़ी में समय है 9:41। आज का दिन बहुत ही खास है और आज गुरु पूर्णिमा है। आप सभी को गुरु पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। आज के इस पावन अवसर पर हम उन गुरुओं को और मार्गदर्शकों का आदर सत्कार करते हैं जिन्होंने हमारे जीवन को ज्ञान और सही दिशा से अलोकित किया है। इसी क्रम में कम्युनिटी रेडियो एफएम 90.0 मेगाहर्ट्ज रेडियो वितस्ता की सफलता और पहचान में गुरु रमेश मराठा जी का योगदान अत्यंत वंदनीय है। उन्होंने अपनी अगाध दूरदर्शिता, समर्पण और मार्गदर्शन से रेडियो वितस्ता को एक नई और सार्थक दिशा प्रदान की है। उनके इस निस्वार्थ प्रयास और दूरगामी सोच ने संस्थान को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया है। इसके साथ ही नरेश शर्मा जी का भी इस यात्रा में विशेष उल्लेख हमेशा रहा है, जिन्होंने अपनी मेहनत और निष्ठा से इस विचार को आगे बढ़ाने और रेडियो वितस्ता के माध्यम से समाज से जुड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। ऐसे महान मार्गदर्शकों का आशीर्वाद और साथ ही हमारी सबसे बड़ी शक्ति है। हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं सबका हमारे साथ बने रहने के लिए और साथ में हमें आशीर्वाद देने के लिए। श्रोताओं, आज 29 जुलाई है और आज का दिन प्राकृतिक के उस अद्भुत और शक्तिशाली जीव को समर्पित है जो हमारे जंगलों का राजा और हमारे देश का राष्ट्र पशु है। आज पूरी दुनिया विश्व बाघ दिवस यानी वर्ल्ड टाइगर डे या अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मना रही है। इस दिन को मनाने का सबसे बड़ा मकसद है बाघों की लगातार घटती आबादी के प्रति लोगों को जगाना और उनके संरक्षण के लिए एकजुट करना है। क्या आप जानते हैं कि इस दिन की शुरुआत कब और कहां से हुई थी? आइए बताते हैं। साल 2010 में रूस के सेंट पीटर्सबर्ग में एक ऐतिहासिक टाइगर समिट का आयोजन किया गया था। उस समय दुनिया भर में बाघों की संख्या चिंताजनक रूप से घट रही थी। इसी समिट में यह फैसला लिया गया कि हर साल 29 जुलाई को विश्व बाघ दिवस मनाया जाएगा और सभी देशों ने संकल्प लिया कि वे आने वाले सालों में बाघों की आबादी को दोगुना करने का प्रयास करेंगे। बाघ हमारे पर्यावरण के लिए क्यों जरूरी है? कुछ बिंदु आपके सामने। पहला, बाघ केवल एक जानवर नहीं है बल्कि वे जंगल के पूरे इकोसिस्टम के को नियंत्रित रखता है। यदि जंगल में बाघ नहीं होते तो शाकाहारी जानवरों की संख्या बेकाबू हो जाएगी जिससे जंगल और वनस्पति नष्ट हो सकती हैं। नंबर दो, जंगलों की अंधाधुंध कटाई, अवैध शिकार यानी पोचिंग और इंसानी दखल के कारण ये शानदार जीव आज विलुप्त होने की कगार पर पहुंच रहे हैं। इन्हें बचाना केवल सरकार का नहीं बल्कि हम सबका सामूहिक कर्तव्य है। रेडियो वितस्ता आज इस मंच से ये संदेश देने की इच्छा रखता है और कोशिश भी करता है कि वन जीवियों की सुरक्षा ही हमारी धरती का असली श्रृंगार है। आइए इस खूबसूरत जीव को बचाने का संकल्प लें। तो श्रोताओं, प्रकृति और वन जीवियों की इस खूबसूरत संदेश के साथ आप घड़ी सुइयां
घड़ी की सुइयां इशारा कर रही है कि आज के इस सुहाने सफर को यहीं थामना होगा। आप सुन रहे थे FM 90.0 MHz पर रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का, आपके जीवन का प्रवाह। और जाने से पहले कुछ पंक्तियां और साथ में कल के कार्यक्रमों का विवरण। आज की पंक्तियां आपको समर्पित है और पंक्तियां यूं हैं, वितस्ता की लहरों से गूंजता रहे प्रकृति का ये गान, वितस्ता की लहरों से गूंजता रहे प्रकृति का ये गान, वन और वन जीवियों से ही सुरक्षित है सबकी जान, लेकर नई उम्मीदें आज के इस सफर को देते हैं विराम, लेकर नई उम्मीदें आज के इस सफर को देते हैं विराम, कल फिर सजेगी महफिलें, महकेगी एक नई शाम। जी हां दोस्तों, ये था आज का टॉपिक और आज की पंक्तियां। जल्दी से कल के कार्यक्रमों का विवरण देता हूं। कल 30 जुलाई 2026 बृहस्पतिवार को जो कार्यक्रम आपके लिए लाए हैं वो इस प्रकार है। सभा की शुरुआत हम करेंगे सुबह 5:58 पर वंदे मातरम और प्रकाश प्रवाह से, और पहली आवाज में आप सभी श्रोताओं का स्वागत और अभिनंदन करेंगे पंचांग के साथ। 6 बजे आप सुनेंगे भक्ति संगीत। 7:05 पर कार्यक्रम होगा सुनहरे पल एपिसोड 9 आनंद बख्शी पर तैयार किया गया कार्यक्रम, पेश करेंगे आज ये किरणी। 8:30 सकारात्मक कहानियों का एपिसोड 1 होगा, डॉक्टर बाबू पेश करेंगे नरेश शर्मा। 9:30 फिल्मी किस्से एपिसोड 1, कल के लिए हमने फिल्म चुनी है आन मिलो सजना। 10:05 पर होगा कार्यक्रम काव्य गोष्ठी, हमारे साथ होंगी कवित्री इंदु शर्मा, पेश करेंगे भारत सोपोरी। और संगीत की सभा जारी रहेगी, 2 बजे आप सुनेंगे साइबर अपराध पर आधारित हमारा एपिसोड आपको जागरूक करने के लिए। 6 बजे भक्ति संगीत, 6:30 शाम में गजल और 7 बजे सुनहरे पल एपिसोड 4 मोहिंदर कपूर पर तैयार किया गया कार्यक्रम, पेश करेंगे आरजी किरणी। और 8:30 हर दिन की तरह कार्यक्रम सुहाना सफर, पेश करेंगे रमेश मराठा, कल की कड़ी है घर परिवार। ये था विवरण कल के कार्यक्रमों का। आप जरूर अपना फीडबैक, अपनी जानकारी हमें भेजिएगा हमारे स्टूडियो के नंबर पर जो है 7056413010। नंबर एक बार फिर 7056413010। उम्मीद है कि आज का ये सफर, हमारी बातें और गानों का ये गुलदस्ता आपकी शाम को बस खास बना गया होगा। कल फिर इसी वक्त इसी तरंग पर हाजिर हम होंगे टीम रेडियो वितस्ता की ओर से, और ये सारी जानकारी आपको आप तक हम पहुंचा रहे हैं टीम रेडियो वितस्ता की ओर से, जिसमें कृष्णा और नैना का योगदान है। और कुछ दिलचस्प बातें और सदाबहार गीतों के साथ हम कल फिर हाजिर होंगे। तब तक अपना ख्याल रखिए, प्रकृति से प्यार कीजिए और सुनते रहिए रेडियो वितस्ता हर दिन सुबह 6 बजे से रात के 9 बजे तक। कल तक के लिए शुभरात्रि, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।